0: से मेन ड्राफ्ट सी एस से मेन ड्राफ्ट सी एस सेंड ग्राउंड ओवर मेन ड्राफ्ट सी एल्डरली पैसेंजर डिनीस शी इज विद लगेज शी इज ऑन डोर टू सर्विस जस्ट डिपार्टिंग एज वी स्पीक ईदर यू और मेंडर स्टाफ प्लीज असिस्ट हर ओके
1: रिसीव डोर टू कॉन्फर्म

0: वाली का मेला लगता है मेला लगता है और सबसे हलवा था हम लोग छुटे हुए थे ना मानो मेरे उसके साथ ना वो प्याज प्याज देते थे जो बेचते थे वो इतना स्वाद लग रहा है मसाला डालते और एक आता है वो क्या फाफड़ा फाफड़ा उसके साथ कड़ी की चटनी
1: खाई
0: ना वो खेड़ा था मसूर खेड़ा कई से इतनी मतलब
2: खाना बहुत है दूसरा में बहुत ज्यादा था मैं जो इसीलिए मैं बोला मेरे यहाँ यूपी में एक दोस्त था मेरा सुपरवाइजर उसका नाम बोला ना तो मैंने बोला कि उसका हाउ कैन यू लिव टू विदाउट मीट
3: In a blue jeans, blue and white jacket, wearing a white hoodie, over. Walking towards platform 5, 38, over.